उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेर इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंदनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो दे अबे प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया, चलो घर चले।
1: नहीं मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

परमात्मा कहते हैं कि न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमर है। तुम अपने आप को समर्पित कर दो, ये ही सबसे उत्तम मार्ग है। जो इस मार्ग पर चलता है वो भय, चिंता, शोक से मुक्त रहता है। जो कुछ भी करो मुझे परमात्मा को अर्पित कर दो। ऐसा करने से

बीन कोटरावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो दीजिए आप फरमाइश ऑप उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑप उजाला रेडियो दिस खाई आई बीन कोटरावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑप उजाला रेडियो

बहुत प्यारा सा गीत महेंद्र कपूर और आशा जी से आप सुने, फिल्म का नाम धूल का फूल और ये उजाला रेडियो है। सुनने वालों, मोहम्मद रफी साहब अब प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे।

आप नाराज, खुदा खैर करे। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म प्यार मोहब्बत का गीत, और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम। एक बार फिर आशा जी, और अब है शमशाद बेगम के साथ में।

और कजरे ने ले ली मेरी जान। आशा जी के साथ शमशाद बेगम से आप सुने फिल्म किस्मत का गीत उजाला रेडियो पर।

भर में, हाँ हर एक गांव में, हर एक कोना में, ओतो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग, तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

0: You are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: एक रोज जिंदगी के रूबरू आ बैठे, जिंदगी ने पूछा, दर्द क्या है, क्यों होता है, कहां होता है, यह भी तो पता नहीं चलता। तन्हाई क्या है आखिर, कितने लोग तो हैं, फिर तन्हा क्यों हो। मेरा चेहरा देखकर जिंदगी ने कहा, मैं तुम्हारी जुड़वा हूं, मुझसे नाराज ना हुआ करो।

जब हुआ तो फूल बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म कन्यादान का गीत।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ हमेशा

शोला बदन पहलू में आ जावो। फिल्म गुमनाम का गीत और गीत के गाने वाले शारदा एंड मोहम्मद रफी साहब, उजाला रेडियो का प्रोग्राम

मुझको तुम जो मिले, हाँ मुझको तुम जो मिले तो ये बहार समझो मिल गया। और गीत के गाने वाले हेमंत कुमार जी के साथ गीता दत्त और फिल्म डिटेक्टिव से निकाला हुआ।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टलफेन से श्रीमान हेंद्रक जियावन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 79 साल की आयु में नेखन जीवंत खियार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई रो का साढ़ू भाई लड़कन अश्विन और प्रवीण जियावन के फुफा अजमी जियावन का मौसा इपन बोरख का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन की मृत्यु लेजगंदाम में हो गई है। अम्स्टलफेन से श्रीमान हेंद्रक जियावन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते मंगलवार को 79 साल के आयु में नेखन जीवंत खियार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई रो का साढ़ू भाई लड़कन अश्विन और प्रवीण जियावन के फुफा अजमी जियावन का मौसा इपन बोरख का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन की मृत्यु लेजगंदाम में हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 4:15 बजे दिन दखान स्टांद क्वार्टोफर फिर किए जाएंगे। क्रीमाटोरियम एकलनबर्ग लान जीफन रेसवेक में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार जियावन और परिवार राम खेलावन के दुख में शामिल है। तेरा

और मृत्यु समाचार आप सुनिए अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से परिवार मथुरा बिंदेश्वरी सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्तख यार औत लड़कन महेंद्र राम उर्मी सुरेश गीता मुकेश सुदेश और स्वर्गीय सुनील की माँ अनिल गायत्री शांता और अमीरा के सास सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदेश्वरी सिंह की मृत्यु अम्स्टर्डम के ओंजे लीफ्राउस्टहाउस वेस्ट में हो गई है जो कि स्वर्गीय श्री ब्रिजलाल मथुरा की विधवा थी। अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से परिवार मथुरा बिंदेश्वरी सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्तख्यार औत लड़कन महेंद्र राम उर्मी सुरेश गीता मुकेश सुदेश और स्वर्गीय सुनील के माँ अनिल गायत्री शांता और अमीरा के सास सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदेश्वरी सिंह की मृत्यु ओंजे लीफ्राउस्टहाउस वेस्ट में हो गई है स्वर्गीय श्री ब्रिजलाल मथुरा के विधवा जो थी। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक वोन्सदाफन फनजीफन तोत आख्तूर उत्फर्डसेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवैग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 3 बजे फ्रेदखानस्तांद 3 यूर किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवैग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। ये सूचना है कि निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्थ फुरजोरखिंग परिवार मथुरा और परिवार बिंदेश्वरी सिंह के दुख में शामिल है।

क्या खूब आंखें है तेरी, क्या खूब आंखें है तेरी, जी लेंगे देख देख कर इनको। फिल्म काम चोर का गीत आप सुने किशोर कुमार और अलका याग्निक से उजाला रेडियो पर।

तुम क्या मिले जाने जा, तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया। लता जी एंड उदित नारायण, फिल्म सातवां आसमान से आप सुने। अब एक बार फिर लता जी, इस बार मनमोहन सिंह के साथ, फिल्म वारिस का गीत।

और एक तो कम जिंदगानी और ऊपर से और कम है जवानी, नेहा कक्कर उन्हीं की आवाज में और साथियों से आप सुने उजाला.nl इन्फॉर्मेशन के लिए

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

है उजाला रेडियो सुनने वालों, मैं हूं लॉयड महावीर। और घड़ी की तरफ देखा जाए तो वक्त हो गया है एक घंटे में अभी सरनाम देश के समाचार हम लाने वाले हैं। और मैं भी बता दूं कि फंदाख इस रोबी मक्का नीत वन रोबी गर्ल है फकांसी से, मार सरनाम देश की कुछ समाचार है जो हम आपसे बताने वाले हैं। दुस वत न्यूज आउट श्रीनाम एंड नतुलक वत लुख्त खोन दुवेर पर। और हो सके हैं कि अदमिया भी अब यहाँ स्टूडियो में आएगा या एंड आर हैविंग इट ओवर आनंद चंदिका सिंह। मार म्यूजिक के साथ समाचार एंड कुछ बातें जो हम आपसे बताने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। वेलकम अलमाल ऑफ देश प्रातः जोंदा।

जाना रेडियो सुनो लो हर कामकाज के लिए फॉर ऑल जो भी कामकाज रहा तू एक ईमेल पठाओ ना info@ujalaprint.nl एंड आल्सो विल मेडून तो के कुछ हैगा तू मांगे दिवाली फकल ऑप्टोग में कुछ करे स्टूर डार ओक एन बरिख ओवर नार info@ujala.nl पर आप भेज सके हैं सुनने वालों उजाला रेडियो ये हैं और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम एक नाम आपको सुनाने को जाने जो मतेन हैबे वाई सुभाष फनफ 3 uur सुभाष के जरिए बैठ गाना हंगामा प्रोग्राम अभी आप सुन लेना फनफ 3 uur कुछ देर तक हम आपके लिए कुछ गाने सुनाने वाले हैं एक गाना है जो कि हमें बहुत मोह लगेगा ये गनवा सुनिए और ये है माइटी मुकेश के गाना आज के इस सोमवार के शाम के प्रोग्राम में ये गाना हम आपको हम माइला सुनावे मुकेश की आवाज़ में फिल्म देवर का गाना है देवर फिल्म का नाम है देवर ये फिल्म में काम कर जाएगा धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर एंड दान सी दैट धर्मेंद्र दान अख्तर पियानो सिट एंड दान एक्टेट दिस नंबर गजोंग डोर माइटी मुकेश आया है मुझे फिर याद

Nou ja, is Ganama, ja, kahi Gana ke saat, dan ja, hopen kan je lekker je toen een पहले जमाने के कुछ बात याद आ गए हैं उजाला रेडियो ये हैं सुनने वालों और उजाला रेडियो के जरिए हम आपको हमने वादा किया था एक हाथ से द सत्यम मार्दिन के गाना हम जरूर आपको सुनाएंगे व सत्यम मार्दिन आ रहे हैं उजाला दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स में सत्यम मार्दिन

कुदरत का है करिश्मा, एक दूसरे से है मिलना, दुनिया की जरजमी पर किस्मत को है आसमाना, ये प्रेम का जहां है हरगिज़ ना भूल जाना, आपस की मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। हमारे तमाम सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, आज इतवार का शाम का प्रोग्राम, 20 तारीख सितंबर का प्रोग्राम, सोमदार 20 सितंबर। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनके तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। इतवार का शाम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम, बैठक गाना हंगामा, इस यू आर उजाला रेडियो। हमारे प्यारे सुनने वालों, जहां पर आप लोग हमें बैठ करके सुनते होंगे, चाहे जिस हाल में सुनते ही जाइए, दिन में 5 बजे तक। अगर आप हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे, हमारा व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9203309 पर आप लोग मुझे ऐप कर सके हैं। तो चलिए पहला बैठक गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, द यंग टाइगर ऑफ बैठक गाना, विशाल हीरा की आवाज में।

0: वेल शाबाश शाबाश आना रे पवन कुमार हमारे हरी कीर्तन में। अवसर से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने द यंग टाइगर ऑफ बैठक गाना विशाल हीरा की आवाज में एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। हमारे प्यारे सुने वालों आकर में मीला भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं। और मीला बैठ के प्रोग्राम सुने हैं, मीना होना चाहिए, मीना आकर में बैठ के प्रोग्राम सुने हैंक की तरफ से अपनी प्यारी प्यारी मीना के लिए प्यार और मोहब्बत के साथ ई गलवा मांगी से मीना बचाई के।
1: तेरी उम्र है 16 साल
0: दारू डोक्सा दूसर मेहरारू

वेल शाबाश शाबाश सजनिया बहिया में बहिया डाल तेरी उमल है 16 साल और इस तरह से द टाइगर ऑफ बैठकाना विशाल खेमाई जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। एंड अब की बार देखा जाए तो भाई अर्जुन बिहारी और वीरेन ये सब दोनों मिला मॉरिशियस के स्थान पर बैठल है एंड उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुने हैं। तो चलिए भाई अर्जुन बिहारी एंड वीरेन ये गाना आप लोग के नाम कृष्ण छेदी के आवाज में

शाबाश शाबाश। और इस तरह से क्रिसम चेदी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो एक और ऐसा ही गीत जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, और इस गाना को गाने वाले होंगे सरवीन तेजू के आवाज में, और ये गाना पेश है दनहाग शहर में आनंद जग्गू के नाम। भाई आनंद, ये गाना तुम्हारे नाम

शाबाश शाबाश आई बॉय, जाने वाले बाल मुआ बोले लौट के आ, लौट के आ। और इस गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने सरवीन तेजू के आवाज में, सुरिनाम का टाइगर एंड अब की बार देबा जी के आवाज में। और इस गाना पेश है दरहा शहर के ननवानी शीला के लिए। और शीला कलिया मेरे फर्त में बेटाइल बोले भाई सुभाष बोले वो गाना हमारे खा तू आज शेखर बजा दिए नती उल्लख बोली। तो इसी गनवा है शीला के लिए जो दनहाक शहर में।

शाबाश शाबाश बोले सखिया खोलो रे कंवड़िया बोले पिया पर देसवा जइयो ना। और इस तरह से स्वर्गीय देवा जी के वास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने वेल एक मिला। और मेरे फर्द में कलिया बैठा बोले तो सबके बोले यौन टाइगर में बोले तू बाटे ये को टाइगर बैठक गाना का धनकी बैल भाई आनंद मंगरू ये गाना तुम्हारे नाम मोतीमाला भोला सिंह जी के आवास में। आई बॉय यू आर

शाबाश शाबाश भलल रेलिया में बैठल एगो पक्का पक्का नशेड़ी एंड यू आर उजाला रेडियो मोती माला भोला सिंह जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड लक्ष्मी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम

शाबाश दागाबाद बतिया तोरी ना मानू रे। और इस तरह से बिजनवती चैतु जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो फैंस सपोर्टर में एमईजीपी प्रोग्राम को बैठ करके सुने एंड यू आर है उजाला रेडियो आई बॉय।

वेल शाबाश शाबाश बबना आवे जाए एन छुए चारी वोर आई बॉय कितना भी साल गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने स्वर्गीय रामदेव चैतू जी की आवाज में, इन्हीं की आवाज में एक और गाना आप लोग सुनेंगे और इस गाना को मांग करने वाला है आमेरे में देखा जाए भाई मनोज मुंगार प्रोग्राम को बैठकर सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम।

0: वल जिंदगी है क्या उड़ती हुई हवा क्या और इस तरह से स्वर्गीय रामदेव चैतू जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने वैसे हिंदी का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे और अब की बार गाना को मांग करने वाला है देखा जाए भाई अनिल आई बोई गधा हुआ कि का हो गए गधवा के मुसीबत है
1: इंसान एक दूसर के धन दौलत हड़प के बस गए मर इस जन्म में देखा गधा बन के भोगे भैया हाफिस
2: अच्छा भैया जयराम तब जब तू मरिए तब तू कौन की हो
1: देख भैया हाफिस जो हम भी कोई के धन दौलत हड़प के खाए के मर जा और जो मरब कैसे ही गधा बन के हम भी भोग अपन कर
0: आई बॉय।

शाबाश शाबाश दूसर के धनवा तू खाई के जब मर जाइये तो तू गधा बन के भरिए आई बोई ऐसर से स्वर्गीय हरिदत्त जयराम जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस गाना को गाने वाले होंगे आंद्रे मोहन और इस गाना हम पेश करेंगे हमारा एक्स कोलेखा रशीद सुलेमान के फॉल का।

अभी आप लोग सुन रहे थे एंड हमारे प्यारे सुनने वालों, रिक्लाम की बात ना दे ब्रेक, हम फिर आप लोग से मिलते हैं। और ये गाना हम ब्रेक के उस पार आपको जरूर से सुना देंगे, आप लोग सुनते ही जाना उजाला रेडियो का प्रोग्राम, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम, बैठक गाना हंगामा। और देखा जाए

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। बस इसका प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा हर इतवार की शाम में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोग इंतजार कर सकते हैं। प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा यार इतवार का शाम को आप लोग चाहे जोंची करते होंगे या तो भोजन करते होंगे या पकाते होंगे या तो आप घर के काम काज करते होंगे या तो आप कपड़ा तिरकी करे बेंत यानत या वेल बेंत यानत तिरकी तिरकी दून बेंत यानत स्ट्राइक और मोई से तिरकी करिए और लाइन में तू जाने तो लाइन में तू बचाए मोई से बैठावे के नहीं तो हम ना पहना बे करीबन 8 मिनट बाद चुकल है 4:04 और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो मोती माला भोला सिंह जी की आवाज में और ये गाना पेश है।

0: वेल शाबाश शाबाश आइले बलमुआ बजरिया में और मोर मन लगा वेल बलमुआ तो से यार आई बॉय यू आर उजाला रेडियो वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा हर इतवार की शाम आप लोग के नाम
1: ठक ठक ठर केला हो जीरा ठक ठक ठर केला
0: आई बॉय दिलवा हमार धक धक धक धर केला
1: कमरी चपी तारे लचकीला हजरिया नोट पर सेला कमरी चपी तोरे
0: और देखा जाए होर शहर में सीन भी प्रोग्राम

शाबाश शाबाश मिलकर बिछुड़ गई अखियां, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुनने वालों, एक बात तो लोग समाइल बोले, ये बतिया तो लोग मोइस सुनिए। वन बोले अतवार के मई साल, बोले अतवार के सब बोले इन फौदख कर रहेगा ऑन बैथ। एक मिला बोले हम किन के ले ली है, सख्त पेंचस या हर्द पेंचस, और का कर से ओली सार्दिन काटी सहीगा, प्याज काटी से और मरचा, और कुछ ना सफा करिस ना ओकर पेट चीरिस ना कुछ, बोले वैसने धर के खा लीस। बोई आई बोई उच जो हम ना करती यार। ओके कोई बात ना है, जैसे तू मांग, हम तो कर पेटवा चीर के सब सफा करके तब खाए लो। तो चलिए अंगंत भोला सिंह जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, पियानो में श्रीमान रामसुख के लिए पेश है।

वेल शाबाश शाबाश जो इस तरह से अंगंत भोला सिंह जी के आवाज में। और चलिए अब की बात तिलबरुख शहर में, देखा जाए सुनीता भी प्रोग्राम को बैठ के सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम

शाबाश इस तरह से आंगन ते भोला सिंह जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुने बोलो एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक और ऐसा है गीत जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं।

वेली शाबाश शाबाश शो इस तरह से ये गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने आंद्रे मोहन की आवाज में। चलिए देखा जाए बरेली शहर में गायत्री भी प्रोग्राम के बारे में सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम।

वाल जब से देख ली सूरतिया तो हार गोड़िया, और इस तरह से ललिता प्रसाद पूरन जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। एंड अब की बात देखा जाए रोतरदम में, प्रोग्राम को बैठ करके सुने और वो भी खास करके चांद छेदी प्रोग्राम को बैठ कर सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम।

शाबाश शाबाश बोले धोबिया मरु जाइए। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और खासर के राजू शिव गुलाम की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए हार्लेम शहर में सीता भी प्रोग्राम को बैठ के सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम स्वर्गीय सनातन जी की आवाज में।

शाबाश शाबाश। चौबीस तरह से खान शिर के स्वर्गीय सनातन जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा।

और हमारे प्यारे सुनने वालों, देखा जाए तो करीबन 10 मिनट बाकी रहा 5 बजने में, 10 मिनट बाकी रहा 5 बजने में, और आप लोग उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, एक और ऐसा ही बैठक गाना जो हम आप लोग को सुनाने वाले हैं,

0: शाबाश शाबाश पातर मोरी कर यार भूई डोले बालम। और इस तरह से चांद छेदी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। आई बॉय हमारे प्यारे सुने बोलो, थोड़ा देर तक और या खाली चार मिनट और आप लोग के साथ वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा, पंडित रामचंद्र बंसीधर जी के आवाज में गाना आप लोग सुनिए।
1: अरे रहिया मिल गए सावर कन्हैया।

और हमारे प्यारे सुनने वालों, इसी गाने के साथ हम आप लोग सब इजाजत चाहेंगे। आशा की जरसा जिस तरह से प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा हम आप लोग के लिए बनाएंगे, वैसे इसका प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों को पसंद भी आए हुए होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। आने वाले सप्ते इतवार को फिर हम आप लोग से मिलेंगे। आप लोग अपना इतवार का शाम, इतवार का रात्रि मोई से बिताइए, मोई से रहियो। जो भी आप लोग करेंगे प्यार से कर लेना, दुलार से कर लेना। एंड फॉर सराकी सलमाल एटी स्माकल कलमाल, स्वादी से भोजन कीजिए, चाहे अंडा बाका भात, चाहे जो चीज आप लोग खाइए, प्यार से खा लियो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज। खिदमत की आपका दोस्त सुभाष शिव गोविंद, मोई से रहिए।

ये है उजाला रेडियो, सुन वालो मैं हूँ लॉयड महावीर। और घड़ी की तरफ देखा जाए तो वक्त हो गया है एक घंटे में अभी सरनाम देश के समाचार हम लाने वाले हैं। और मैं भी बता दूं कि फंदाख इस रोबी मक्का नीत वन रोबी गल है फकांसी से, मगर सरनाम देश की कुछ समाचार है जो हम आपसे बताने वाले हैं। दुस वत न्यूज आज श्री नाम है नतीलक वत लुख्त खोन दुवेर पर हो सके हैं कि अदमिया भी अब यहाँ स्टूडियो में आएगा या एंड आर हैविंग इट ओवर आनंद चंदिका सिंह। मगर म्यूजिक के साथ समाचार एंड कुछ बातें जो हम आपसे बताने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। वेलकम अलमाल ऑफ देश प्रातः जोंदा।

0: नई शहर है, नई चाल है। हम लोग कह लिए हैं सरनाम से यहाँ हॉलैंड में, और अपन सब चीज बदल दे ली हम लोग। Origineel gezongen door onze collega Vijay Rambran, maar dit is door AI gemaakt. अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए नई चाल है, नई शहर है, और सामने भी है आनंद चंद्रिका सिंह। आनंद, goedemiddag, je ziet er heel erg moe uit.
1: आमने सामने
0: खाइले वेले की ना, तू कुछ कॉफी वॉफी पीले की ना, चाय वे पीले की ना?
1: कॉफी कॉफी चाय एंड क्रीसस। कैसे हैगा, गुडमिदा?
0: मोय मोय मोय, गुडमिदा। ये सीटर एक मुंह आउट, मैं वेल फॉल्डन। नहीं, मैं नहीं फरवाह, मैं यहाँ सुन, हम जानी ला तू, हम तो के घाइ, हम तो के घाइ ले ला यहाँ पे स्टूडियो में। तो
1: प्यार मोहब्बत ऐसे ही रहेगा,
0: प्यार मोहब्बत में ऐसे है,
1: प्यार मोहब्बत से हिच लिए
0: या तो,
1: और नफरत से दूर हो जाएगा तो से।
0: सुन सुन सुन सुन सुन, फोर दैट यू फेयर हार्ट है आनंद, सुन सुन सुन,

जाल रेडियो सुनो लो हर कामकाज के लिए फॉर ऑल जो भी कामकाज रहा तू एगो ईमेल पठाओ ना info@ujala.nl info@ujala.nl En als je wil meedoen, toch je kuch hega, tu mange Diwali fakkel op toch mee kuch kare, stuur daar ook een bericht over naar info@ujala.nl per aap bheed sake hain sunwalo. Ujala Radio ye hain, aur Ujala Radio ke zariye program mein hum ek nahma aapko sunan gujane. Zometeen hebben wij Subhas vanaf 3 uur. Subhas ke zariye buiten gana hangaan program abhi aap sunlena vanaf 3 uur. कुछ देर तक हम आपके लिए कुछ गाने सुनाने वाले हैं एक गाना है जो कि हमें बहुत मोहे लगेगा ये गाना सुनिए और ये है माइटी मुकेश के गाना आज के इस सोमवार के शाम के प्रोग्राम में ये गाना हम आपको हम माइला सुनावे मुकेश की आवाज़ में फिल्म देवर का गाना है देवर फिल्म का नाम है देवर ये फिल्म में काम करिएगा धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर En dan zie je dat Dharminder dan achter een piano zit. En dan acteert hij dit nummer. Gezongen door Maitie Mukesh. Aya hai mujhe phir yaad.

Nou ja, is ganama ja kahi igana ke saat dan ja hoop ik wel dat je toen ook bij पहले जमाने के कुछ बात याद आ गए हैं। उजाला रेडियो ये है सुनने वालों और उजाला रेडियो के जरिए हम आपको हमने वादा किया था एक हाथ से द सत्यम मातदिन के गाना हम जरूर आपको सुनाएंगे। वह सत्यम मातदिन आ रहे हैं उजाला दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स में सत्यम मातदिन।

नम्र संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुनिए। आम्स्टरडम और बाकी नीदरलैंड से समस्त परिवार बिंदेसरी सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत स्वर्गीय श्री मनीराम बिंदेसरी सिंह और स्वर्गीय मां साम्राजी दर्शन के बेटी सोनी आंद्रे राज बेनी एरिक किशोर रोसिल मीला आईफी रॉय और स्वर्गीय क्रिस के बहन सात भाऊजी के ननद दो छुटकू के बड़की और सभी लड़कन के फूआ मौसी नानी और आजी आम्स्टरडम वेस्ट की रहने वाली विधवा वेलमा मथुरा बिंदेसरी सिंह की मृत्यु आम्स्टरडम के ओंजे लीफ फ्रावखास्थाइस में हो गई है। आम्स्टरडम और बाकी नीदरलैंड से परिवार बिंदेसरी सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत स्वर्गीय पिता श्री मनीराम बिंदेसरी सिंह और स्वर्गीय मां श्री साम्राजी दर्शन के बेटी सोनी आंद्रे राज बेनी एरिक किशोर रोसिल मीला आईफी रॉय और स्वर्गीय क्रिस के बहन सात भाऊजी के ननद दो छुटकू के बड़की और सभी लड़कन के फूआ मौसी नानी और आजी आम्स्टरडम वेस्ट की रहने वाली विधवा वेलमा मथुरा बिंदेसरी सिंह की मृत्यु आम्स्टरडम के ओंजे लीफ फ्रावखास्थाइस वेस्ट में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक आउटफार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 3 बजे फ्रेडा कांस्टांड द्री उर किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग समस्त परिवार बिंदेसरी सिंह और परिवार मथुरा के दुख में शामिल है।

जान रेडियो सुन वालों, मैं हूं लॉयड महावीर। और घड़ी की तरफ देखा जाए तो वक्त हो गया है एक घंटे में अभी सरनाम देश के समाचार हम लाने वाले हैं। और मैं भी बता दूं कि फंदाख इस रोबी मक्का नीत वन रोबी गल है फकांसी से, मार सरनाम देश की कुछ समाचार है जो हम आपसे बताने वाले हैं। दिस व्हाट न्यूज आउट सुरीनाम एंड नेचुरली व्हाट लुख्तग ऑनवर्ड। और हो सके हैं कि अदमिया भी अब यहाँ स्टूडियो में आएगा या एंड देन हैव इट ओवर आनंद चंदिका सिंह। मार म्यूजिक के साथ समाचार एंड कुछ बातें जो हम आपसे बताने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। वेलकम अलमाल ऑफ दिस प्रातः जोंदा।

उजाला रेडियो सुनो लो हर कामकाज के लिए फॉर ऑल जो भी कामकाज रहा तू एगो ईमेल पठाओ नार info@ujala.nl एंड आल्सो विल मेडून तो के कुछ हैगा तू मांगे दिवाली फकल ऑप्टोह में कुछ करे स्टूर डार ओक एन ब्रिग ओवर नार info@ujala.nl पर आप भेज सके हैं सुनने वालों उजाला रेडियो ये हैं और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम एक नाम आपको सुनाने को जाने जो मतेन हैव वाई सुभाष फनफ 3 uur सुभाष के जरिए बैठ गाना हंगामा प्रोग्राम अभी आप सुन लेना फनफ 3 uur कुछ देर तक हम आपके लिए कुछ गाने सुनाने वाले हैं एक गाना है जो कि हमें बहुत मोह लगेगा गनवा सुनिए और यह है माइटी मुकेश के गाना आज के इस सोमवार के शाम के प्रोग्राम में ये गाना हम आपको हम माइला सुनावे मुकेश की आवाज में फिल्म देवर का गाना है देवर फिल्म का नाम है देवर ये फिल्म में काम कर जाएगा धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर एंड सी दैट धर्मेंद्र डाउन अखतर पियानो सेट एंड ऑन एक्टिविटी दैट नंबर गजोंग दौर माइटी मुकेश आया है मुझे फिर याद

Nou ja, is Ganama, ja, kan hij Ghana kiesaat, dan ja, hoop ik eigenlijk dat toen ik bij पहले जमाने के कुछ बात याद आ गए हैं। उजाला रेडियो ये है सुनने वालों और उजाला रेडियो के जरिए हम आपको हमने वादा किया था एक हाथ से द सत्यम माता दिन के गाना हम जरूर आपको सुनाएंगे। व सत्यम माता दिन आ रहे हैं उजाला दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स में सत्यम माता दिन।

तू थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा।

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो डीएबी प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।